अभी आपने समूह स्वर में ये देशभक्ति पर रचना सुनी जिसके रचयिता थे एन के बेहरे। कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं मालती पांडे के स्वर में संत जनाबाई की ये भक्ति रचना। संगीतकार हैं दादा चांदेकर।

संत जनाबाई की ये भक्ति रचना अभी आपने सुनी मालती पांडे के स्वर में। संगीतकार थे दादा चांदेकर। कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं डॉक्टर वसंतराव देशपांडे के स्वर में संत निवृत्तिनाथ की ये भक्ति रचना।

अभी आपने संत निवृत्तिनाथ की भक्ति रचना सुनी डॉक्टर वसंतराव देशपांडे के स्वर में। कार्यक्रम की अगली भक्ति रचना आइए सुनते हैं विदुषी माणिक वर्मा के स्वर में। रचनाकार हैं बाभव बोरकर।

बाबा बोरकर ने रची ये भक्ति रचना अभी आपने सुनी विदुषी माणिक वर्मा के स्वर में। कार्यक्रम के अंत में आइए अब सुनते हैं इंद्रजीत पवार के स्वर में संत एकनाथ महाराज की ये भक्ति रचना।

कर्नाटिक क्लासिकल म्यूजिक बाय द स्टाफ आर्टिस्ट ऑफ आकाशवाणी एंड इंस्ट्रूमेंटल एंसेंबल। लेट अस लिसन टू विटपी राग एंड खंडचापू ताल।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: यह है रागम 2400 घंटे सातों दिन उपलब्ध है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत लीजिए सर्वप्रथम प्रस्तुत है भैरव ध्रुपद। कलाकार हैं सुमन गुप्ता। आपके साथ पखवास पर हैं प्रबालनाथ और हारमोनियम पर हैं कमलाखा मुखोपाध्याय। लीजिए प्रस्तुत है सर्वप्रथम भैरव ध्रुपद। कलाकार हैं सुमन गुप्ता।
2: दिस इज रागम 24/7 ऑन DTH एनी टाइम इंडियन म्यूजिक। दिस मॉर्निंग वी प्रेजेंट हिंदुस्तानी वोकल रिसाइटल फॉलोड बाय A Hindustani instrumental recital. Listen first to Bhairav Dhrupad. Our artist is Shumona Gupta. Accompanying our artist on the pakhavaj is Prabalnath and on the harmonium is Komalakho Mukhopadhyay. Listen now to Bhairav Dhrupad. Our artist Shumona Gupta.

0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी आप सर्वप्रथम भैरव द्रुपद सुन रहे थे। कलाकार थे सुमन गुप्ता, आपके साथ पखवास पर थे प्रबाल नाथ और हारमोनियम पर थे कमलाखा मुखोपाध्याय। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम को जारी रखते हुए लीजिए प्रस्तुत है राग नट भैरव पर संतूर वादन। कलाकार हैं अखिल रॉय, आपके साथ तबले पर हैं अभिषेक चट्टोपाध्याय। तो लीजिए प्रस्तुत है राग नट भैरव पर संतूर वादन, कलाकार हैं अखिल रॉय।
1: You were listening to Bhairav Dhrupad. Our artist was Shumona Gupta. Accompanying our artist on the Pakhavaj was Prabal Nath, and on the harmonium was Kamalakho Mukhopadhyay. This is Ragam 24/7 on DTH Anytime Indian Music. Continuing the concert, we now present a Santoor recital. Listen to a Santoor recital in the Rag Nat Bhairav. Our artist is Akhil Roy. Accompanying our artist on the tabla is Abhishek Chattopadhyay. Listen now to the Santoor in the Rag Nat Bhairav. Our artist, Akhil Roy.

0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी आप राग नट भैरव पर संतूर वादन सुन रहे थे। कलाकार थे अखिल रॉय, आपके साथ तबले पर थे अभिषेक चट्टोपाध्याय। ये आकाशवाणी कोलकाता केंद्र की भेंट थी। ये है रागम, 2400 घंटे सातों दिन उपलब्ध है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत।
1: You were listening to a Santoor recital in the rag Nat Bhairav. Our artist was Akhil Roy. Accompanying our artist on the tabla was Abhishek Chattopadhyay. This program was earlier recorded and produced in the studios of All India Radio Kolkata for Ragam 24/7 on DTH Anytime Indian Music.

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में प्रस्तुत है पंडित कार्तिक कुमार का सुरबहार वादन, राग है यमन कल्याण। इसमें आप सुनेंगे आलाप, जोड़ और झाला, जिसके बाद आप सुनेंगे गत जो धमार ताल में निबद्ध है।
2: इन द प्रोग्राम ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक वी प्रेजेंट सुरबहार रिसाइटल बाय पंडित कार्तिक कुमार। बिगिंस हिज रिसाइटल विथ राग यमन कल्याण, आलाप, जोड़ एंड झाला, फॉलोड बाय गत सेट टू धमार ताल।

0: ये है रागम डीटीएच चैनल, हर दिन हर पल भारतीय संगीत।
1: अभी आप सुन रहे थे पंडित कार्तिक कुमार का सुरबहार वादन, राग था यमन कल्याण। आपके साथ बगावत पर संगत की प्रकाश शेजवाल ने। कार्यक्रम को जारी रखते हुए अब हम आपको सुनवा रहे हैं पंडित कार्तिक कुमार का सुरबहार पर बजाया राग अलैया बिलावल। इसमें आप सुनेंगे आलाप जोड़, जिसके बाद आप सुनेंगे गत जो कि चौताल में निबद्ध है।
0: दिस इज रागम डीटीएच चैनल, एनी टाइम इंडियन म्यूजिक।
2: दैट वाज राग यमन कल्याण। पंडित कार्तिक कुमार वाज अकंपनीड ऑन पखावज बाय प्रकाश शेजवाल। इन कंटिन्यूशन ऑफ प्रोग्राम वी प्रेजेंट राग अलहैया बिलावल ऑन सुरबहार बाय पंडित कार्तिक कुमार, इन विच यू लिसन आलाप जोड़ फॉलोड बाय गत सेट टू चौथा।

0: ये है रागम डीटीएच चैनल, हर दिन हर पल भारतीय संगीत।
1: ये था राग अलहिया बिलावल, और अब हम आपको सुनवाते हैं पंडित कार्तिक कुमार का सुरभार पर बजाया राग चंद्रकोंस। इसमें आप पहले सुनेंगे आलाप और उसके बाद एक गद जो कि चौताल में निपत है।
0: दिस इज रागम डीटीएच चैनल, एनी टाइम इंडियन म्यूजिक।
2: दैट वाज राग अलहिया बिलावल, पंडित कार्तिक कुमार नाउ प्रेजेंट राग चंद्रकोंस, इन विच यू लिसन आलाप फॉलोड बाय गत सेट टू चौताल।

0: अभी आप सुन रहे थे पंडित कार्तिक कुमार का सुरबहार वादन। पखावज पर आपके साथ संगत की प्रकाश शेजवाल ने। यह आकाशवाणी मुंबई की भेंट थी।
1: यह है रागम डीटीएच चैनल, हर दिन हर पल भारतीय संगीत।
2: यू आर लिसनिंग सुरबहार रिसाइटल बाय पंडित कार्तिक कुमार, अकंपनीड हिम ऑन पखावज बाय प्रकाश शेजवाल। दिस वॉज द कंट्रीब्यूशन ऑफ AIR मुंबई।
1: दिस इज रागम डीटीएच चैनल, एनी टाइम इंडियन म्यूजिक।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये आकाशवाणी का रागम चैनल है. प्रस्तुत है पंडित अजय प्रसन्ना का बांसुरी पर बजाया राग चंद्रप्रभा में रूपक ताल और तीन ताल. तबले पर आपकी संगति की है उस्ताद रफीउद्दीन साबरी ने.
2: This is the Ragam channel of All India Radio. We now present a flute recital by Pandit Ajay Prasanna. He first presents Rag Chandraprabha, in which he first presents a composition set to Rupak Tal, followed by a composition set to Teen Tal. He is accompanied on the tabla by Ustad Rafiuddin Sabri.

0: अभी आप सुन रहे थे पंडित अजय प्रसन्ना का बांसुरी पर बजाया राग चंद्रप्रभा। तबले पर आपकी संगति की थी रफीउद्दीन साबरी ने। और लीजिए अब सुनिए पंडित अजय प्रसन्ना का बांसुरी पर बजाया राग शंख ध्वनि।
1: यू वर लिस्निंग टू राग चंद्रप्रभा प्लेड ऑन द फ्लूट बाय पंडित अजय प्रसन्ना। कंटिन्यूइंग विद हिज रिसाइटल ही नाउ प्रेजेंट्स राग शंख ध्वनि सेट टू तीन ताल।

0: अभी आप पंडित अजय प्रसन्ना का बांसुरी पर बजाया राग शंख ध्वनि सुन रहे थे, और लीजिए अब सुनिए धुन मिश्र खमाज। तबले पर आपकी संगति की है उस्ताद रफीउद्दीन साबरी ने।
1: यू आर लिस्निंग टू राग शंख ध्वनि। पंडित अजय प्रसन्ना नाउ कंक्लूड्स हिज फ्लूट रिसाइटल विद अ धुन इन राग मिश्र खमाज।

0: भैया, पंडित अजय प्रसन्ना का बांसुरी पर बजाया धुन मिश्र खमाज सुन रहे थे। तबले पर आपकी संगति की थी उस्ताद रफीउद्दीन साबरी ने। ये कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली की प्रस्तुति थी।
1: विद दैट धुन इन मिश्र खमाज वी कम टू द एंड ऑफ द फ्लूट रिसाइटल प्रेजेंटेड बाय पंडित अजय प्रसन्ना। ही वाज अकंपनीड ऑन द तबला बाय उस्ताद रफीउद्दीन साबरी। दिस प्रोग्राम वाज अ प्रेजेंटेशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली।

0: चिन्तयेहं सदा रागम शंकराभरणम् चतुरस्र जाति एकतालम्।
1: यू विल नाउ लिसन टू चिन्तयेहं सदा इन राग शंकराभरणम् सेट टू चतुरस्र जाति एकताल।

धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये है रागम DTH चैनल, हर दिन हर पल भारतीय संगीत, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आइए सुनते हैं बाबूलाल गंधर्व का बेला बहार वादन। प्रस्तुत है राग गुजरी तोड़ी। विलंबित गत एक ताल में निबद्ध है तथा द्रुत गत तीन ताल में निबद्ध है। उन्हें तबले पर संगति कर रहे हैं शंतनु किंजवड़ेकर। दिस इज रागम DTH चैनल, एनी टाइम इंडियन म्यूजिक। इन द प्रोग्राम ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक वी प्रेजेंट बेला बहार रिसाइटल बाय बाबूलाल गंधर्व। ही प्रेजेंट्स राग गुजरी तोड़ी, विलंबित गत सेट टू एक ताल एंड द्रुत गत सेट टू तीन ताल। ही इज अकंपनीड ऑन तबला बाय शंतनु किंजवड़ेकर।

ये था राग गुजरी तोड़ी। अपना बेला बहार वादन जारी रखते हुए बाबूलाल गंधर्व अब प्रस्तुत करते हैं राग जोग। मध्यलय गत रूपक ताल में निबद्ध है, द्रुत गत तीन ताल में निबद्ध है। दैट वॉज राग गुजरी तोड़ी। इन कंटिन्यूएशन ऑफ हिज बेला बहार रिसाइटल बाबूलाल गंधर्व नाउ प्रेजेंट राग जोग। मध्यलय गत सेट टू रूपक ताल एंड द्रुत गत सेट टू तीन ताल।

ये था राग जोग। आप सुन रहे थे बाबूलाल गंधर्व का बेला बहार वादन। उन्हें तबले पर संगति कर रहे थे शंतनु किंजवड़ेकर। यह आकाशवाणी मुंबई की प्रस्तुति थी। यह है रागम DTH चैनल, हर दिन हर पल भारतीय संगीत। दैट वॉज राग जोग। यू आर लिसनिंग टू बेला बहार रिसाइटल बाय बाबूलाल गंधर्व। ही वॉज अकम्पनीड ऑन तबला बाय शंतनु किंजवड़ेकर। दिस वॉज अ कॉन्ट्रीब्यूशन बाय ऑल इंडिया रेडियो मुंबई। दिस इज रागम DTH चैनल। एनी टाइम इंडियन म्यूजिक।

Gama ba da ba ma ga ga ba ma ga ga.

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये है रागम 24 घंटे सातों दिन DTH पर उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत. हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत आज हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं राग केदार में ख्याल गायन. आज के कलाकार हैं पंडित मनोजीत मल्लिक. आज आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं श्यामल कांजीलाल. हारमोनियम पर हिरणमय मित्रा और सारंगी पर साथ दे रहे हैं पंकज मिश्रा. तो लीजिए प्रस्तुत है राग केदार में ख्याल. कलाकार पंडित मनोजीत मल्लिक.
2: दिस इज रागम 24/7 ऑन DTH एनी टाइम इंडियन म्यूजिक. दिस इवनिंग वी प्रेजेंट अ हिंदुस्तानी वोकल रिसाइटल. Listen to a Khayal recital in Raag Kedar. Our featured artist this evening, Pandit Monojit Mollik. The accompanying artists are Shyamal Kanjilal on the tabla, Hiranmoy Mitra on the harmonium, and Pankaj Mishra on the sarangi. Listen then to a Khayal recital in Raag Kedar. Our artist, Pandit Monojit Mollik.

हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी आप राग केदार में ख्याल सुन रहे थे। आज आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे श्यामल कांजीलाल, हारमोनियम पर हिरणमय मित्रा,

0: और सारंगी प्रसाद दे रहे थे पंकज मिश्रा। ये है रागम, 24 घंटे सातों दिन डीटीएच पर उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत। कार्यक्रम को जारी रखते हुए पंडित मनोजीत मल्लिक प्रस्तुत कर रहे हैं ख्याल और ठुमरी। पंडित मनोजीत मल्लिक पहले प्रस्तुत कर रहे हैं राग नंद में ख्याल। तो आइए सुनते हैं राग नंद में ख्याल, कलाकार पंडित मनोजीत मल्लिक। आज आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं श्यामल कांजी लाल, हारमोनियम पर हिरणमय मित्रा और सारंगी पर हैं पंकज मिश्रा। तो लीजिए प्रस्तुत है राग नंद में ख्याल, कलाकार पंडित मनोजीत मल्लिक।
1: यू आर लिसनिंग टू अ हिंदुस्तानी वोकल रिसाइटल अ ख्याल इन राग केदार। आवर आर्टिस्ट वाज पंडित मनोजीत मल्लिक। दिस इज रागम 24/7 ऑन DTH एनीटाइम इंडियन म्यूजिक। पंडित मनोजीत मल्लिक कंटिन्यूज अवर इवनिंग परफॉर्मेंस विद अ ख्याल इन राग नंद। द अकॉम्पनिंग आर्टिस्ट आर Shyamal Kanjilal on the tabla, Hiranmoy Mitra on the harmonium, and Pankaj Mishra on the sarangi. Khayal in Rag Nand. Our artist, Pandit Monojit Mollik.

0: अभी आप राग नंद में ख्याल सुन रहे थे। पंडित मनोजीत मल्लिक अपना गायन का क्रम जारी रखते हुए प्रस्तुत कर रहे हैं माछ खमास ठुमरी। तो लीजिए सुनिए माछ खमास ठुमरी, कलाकार पंडित मनोजीत मल्लिक।
1: यू आर लिसनिंग टू अ हिंदुस्तानी वोकल रिसाइटल अ ख्याल इन राग नंद। आवर आर्टिस्ट वॉज पंडित मनोजीत मल्लिक। पंडित मनोजीत मल्लिक concludes his vocal recital with a thumri in Maj Khambaj. Listen then to a thumri in Maj Khambaj. Our artist, Pandit Monojit Mullik.

0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी आप माच खमास ठुमरी सुन रहे थे। आज के कलाकार थे पंडित मनोजीत मल्लिक। आज आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे श्यामल कांजी लाल। हारमोनियम पर थे हिरणमय मित्रा और सारंगी पर साथ दे रहे थे पंकज मिश्रा। ये हमारे आकाशवाणी के कोलकाता केंद्र की भेंट थी। रागम 2400 घंटे सातों दिन DTH पर उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत।
1: यू आर लिसनिंग टू अ हिंदुस्तानी वोकल रिसाइटल, अ ख्याल एंड ठुमरी रिसाइटल बाय एन आर्टिस्ट पंडित मनोजीत मल्लिक। पंडित मनोजीत मल्लिक फर्स्ट परफॉर्म्ड अ ख्याल इन राग नंद एंड कंक्लूडेड विद अ ठुमरी इन माच खामबाज। ही वॉज अकॉम्पनीड ऑन द तबला बाय श्यामल कांजीलाल एंड ऑन द हारमोनियम बाय हिरणमय मित्रो। पंकज मिश्रा वॉज ऑन द सारंगी। This program was recorded and produced in the studios of All India Radio, Kolkata for Ragam, 24/7, anytime Indian music.

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये है रागम हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत. आज प्रस्तुत है कृष्ण चंद्र गुप्त का बजाया विचित्र वीणा वादन. आप सबसे पहले राग ललित प्रस्तुत करेंगे जिसमें आलाप, तत्पश्चात विलंबित तथा द्रुत बंदिश जो कि तीन ताल में निबद्ध है प्रस्तुत करेंगे. आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं भरत कुमार मिश्र.

ये है रागम, 24 घंटे सातों दिन DTH अनवरत भारतीय संगीत। अभी आप सुन रहे थे कृष्णचंद्र गुप्त का विचित्र वीणा पर राग ललित। आइए अब सुनते हैं इन्हीं का बजाया विचित्र वीणा पर राग जो कौंस। आप पहले आलाप, तत्पश्चात विलंबित एवं द्रुत बंदिश जो कि तीन ताल पे निबद्ध है प्रस्तुत करेंगे। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं भरत कुमार मिश्र।

अभी आप सुन रहे थे कृष्णचंद्र गुप्त का बजाया विचित्र वीणा पर राग ज्यों कोस। कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति है रामेश्वर प्रसाद मिश्र का गाया राग मियां की तोड़ी। आप द्रुत बंदिश प्रस्तुत करेंगे जिसके बोल हैं अब मोरे नैया पार करूं। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं रजनीश मिश्र एवं हारमोनियम पर साथ दे रहे हैं इलियास खां।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये है रागम, हर पल हर समय भारतीय शास्त्रीय संगीत। अब आप सुनेंगे हिंदुस्तानी शैली में खयाल गायन। कलाकार हैं पंडित बाला साहेब पूछवाले। राग है देव गंधार। तबले पर संगत की है रामस्वरूप रतौनिया ने। This is Ragam 24/7, an exclusive Indian classical music channel. Now listen to a Hindustani khayal recital by Pandit Bala Saheb Poochwale. The rendition commences with the rag Dev Gandhar. The accompaniment has been provided by Ram Swaroop Ratonia on the tabla.

आप सुन रहे हैं हिंदुस्तानी ख्याल गायन, कलाकार हैं पंडित बाला साहेब पूछवाले। यू आर लिसनिंग टू हिंदुस्तानी ख्याल रिसाइटल बाय पंडित बाला साहेब पूछवाले। ये है रागम हर पल हर समय भारतीय शास्त्रीय संगीत। इस कार्यक्रम को जारी रखते हुए अब आप सुनेंगे राग बिलास खानी तोड़ी। विलंबित ख्याल झूमरा ताल में निबद्ध है, बोल हैं बिल से अतन्यारी। द्रुत ख्याल एक ताल में निबद्ध है, बोल हैं सुनत भई देववाणी। नाउ द आर्टिस्ट रेंडर्स राग बिलास खानी तोड़ी।

अभी आप सुन रहे थे हिंदुस्तानी ख्याल गायन, कलाकार थे पंडित बाला साहेब पूछवाले, संगत कलाकार थे तबले पर रामस्वरूप रतौनिया। हर पल हर समय रागम के लिए ये थी आकाशवाणी के भोपाल केंद्र की भेंट। यू वे लिसनिंग टू हिंदुस्तानी ख्याल रिसाइटल बाय पंडित बाला साहेब पूछवाले। द कंपनीमेंट वॉज प्रोवाइडेड बाय रामस्वरूप रतौनिया ऑन द तबला। This program was contributed by All India Radio Bhopal for Ragam 24/7, an exclusive Indian classical music channel.

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये आकाशवाणी का रागम चैनल है. प्रस्तुत है विदुषी सुलोचना बृहस्पति का गाया राग शिवमत भैरव. तबले पर आपकी संगति की है विनोद पाठक ने और सारंगी पर पंडित भारत भूषण गोस्वामी ने.
2: This is a Ragam channel of All India Radio. We now present a vocal rendition by Vidushi Sulochana Braspati. First listen to Rag Shivmat Bhairav. She is accompanied by Vinod Pathak on tabla and Pandit Bharat Bhushan Goswami on sarangi.

0: अभी आप विदुषी सुलोचना बृहस्पति का गाया राग शिवमत भैरव सुन रहे थे, और लीजिए अब सुनिए राग हिंडोल। तबले पर आपकी संगति की है विनोद पाठक ने, और सारंगी पर पंडित भारत भूषण गोस्वामी ने।
1: यू आर लिसनिंग टू अ वोकल रेंडिशन इन राग शिवमत भैरव बाय विदुषी सुलोचना बृहस्पति। शी वाज अकंपनीड बाय विनोद पाठक ऑन तबला एंड पंडित भारत भूषण गोस्वामी ऑन सारंगी। नाउ लिसन टू राग हिंडोल।

0: अभी आप विदुषी सुलोचना बृहस्पति का गाया राग हिंडोल सुन रहे थे। तबले पर आपकी संगति की थी विनोद पाठक ने और सारंगी पर पंडित भारत भूषण गोस्वामी ने। ये कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली की प्रस्तुति थी।
1: यू वर लिसनिंग टू अ वोकल रेंडिशन इन राग हिंडोल बाय विदुषी सुलोचना बृहस्पति। शी वाज अकंपनीड बाय विनोद पाठक ऑन तबला एंड पंडित भारत भूषण गोस्वामी ऑन सारंगी। दिस प्रोग्राम इज द प्रेजेंटेशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये है रागम DTH चैनल, हर दिन हर पल भारतीय संगीत. प्रस्तुत है भक्ति संगीत. कार्यक्रम का आरंभ करते हैं सुरेश वाडकर और सहकारियों के स्वर में इस पारंपरिक रचना से.

सुरेश वाडकर और सहकारियों से ये पारंपरिक भक्ति रचना अभी आपने सुनी। आइए अब सुनते हैं उत्तरा केलकर से चंद्रशेखर पांडे की ये भक्ति रचना।

कहकर के स्वर में चंद्रशेखर पांडे की ये भक्ति रचना अभी आपने सुनी। अब सुनते हैं लक्ष्मी शंकर से ये भक्ति रचना।

लक्ष्मी शंकर के स्वर में संत सूरदास की ये भक्ति रचना अभी आपने सुनी। आइए अब सुनते हैं अहमद रफीक के स्वर में संत मीराबाई की ये भक्ति रचना।

अहमद रफीक के स्वर में संत मीराबाई की भक्ति रचना अभी आपने सुनी। आइए अब सुनते हैं विवेक प्रकाश के स्वर में संत कबीरदास की ये भक्ति रचना।

विवेक प्रकाश के स्वर में संत कबीरदास की भक्ति रचना अभी आपने सुनी। आइए अब सुनते हैं शीला वर्मा से ये भक्ति रचना।

संत मीराबाई की भक्ति रचना अभी आपने सुनी, स्वर था शीला वर्मा का। आइए आप सुनते हैं मीनाक्षी मुखर्जी के स्वर में संत सूरदास की ये भक्ति रचना।

मीनाक्षी मुखर्जी के स्वर में संत सूरदास की भक्ति रचना अभी आपने सुनी। अब सुनते हैं शुभा जोशी के स्वर में संत धर्मदास की ये भक्ति रचना।